तस्मै शिखराय नमः शिवाय। ॐ मनरिति भस्म जलमिति भस्म है मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय, मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय, नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय, शिवाय गौरी बदनाब्ज ब्रिज, सूर्याय दक्षा धुरनाशकाय, श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय। शिवाय गौरी बदनाब्ज ब्रिज, सूर्याय दक्षा धुरनाशकाय। कंठ में भी कर दो, गले में हिया। शिवाय गौरी बदनाब्ज ब्रिज, सूर्याय मेष धुरनाशकाय। हरिः ओम पिनाकहस्ताय सूर्याय श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय। ओम यक्षस्वरूपाय जटाधरकाय पिनाकहस्ताय सनातनाय। ओम दिवाय देवाय दिगंबराय तस्मै हकाराय नमः शिवाय। ओम जलमिति भस्म अग्निरिति भस्म हरि ओम। अपवित्र पवित्र वा सर्वा वस्तम गतो विवा अदसाय यस्मृत पुनरीकाक्षम स्वबाह्याभ्यंतर शुचि। यस्मृत पुनरीकाक्षम स्वबाह्याभ्यंतर शुचि। ज्यादा हो गए कुछ समझिए। अच्छा तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय विद्महे तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरिः ओम भस्मांगराय नीलकंठाय महेश्वराय सदाशिवाय। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय, मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय, नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय। मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय। गुड गुड। पिनाकहस्ताय जटाधराय। गुड। ओम मंदार पुष्प बहु पुष्प सुविजिताय। ए प्राण प्रतिष्ठन्तु असे प्राण क्षरन्तु च असे देवत्वमर्चाय माम हेतु च कश्चनः। हरिः ओम गंगे चैमने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम जलस्नानं करिष्यामि श्रीगं गणाधिपतये नमः। हरि ओम लिंगास्थानम करिष्यामि। ओम श्री नारायण गंगे जैमिने जैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी स्नानार्थं प्रतिक्रियताम्। हरि ओम तीन बार। अस्य प्राण प्रतिष्ठन्तु अस्य प्राण क्षरन्तु च अस्य देवत्वमर्चाय माम हेतु च कश्चन इति जलस्नानम करिष्यामि इति जलस्नानम करिष्यामि। ओम नमः।

हेतु स पयस्न नार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम इति पंचामृतं मया नीतं पयोदधिकृतं मधु शर्करया समायुक्तं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। शर्करया स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। हरिः ओम। ओम गंगे यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। हरिः ओम। कामधेनु समुत्पन्नं सर्वेषां जीवनं परं पयस्नानार्थं प्रतिगृह्यतां। पावन यज्ञ हेतु च पयस्नानार्थं प्रतिगृह्यतां। ओम सदाशिवाय नमः। साम सदाशिवाय नमः। एवरी टाइम कीप चैंटिंग ओम नमः शिवाय व्हाइल यू डूइंग वॉशिंग। हरिम सदाशिवाय नमो नमः। साम सदाशिवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम तरुपुष्परेतु समुद्भूतं सुस्वादं मधुरं मधु तेजपुष्टिकरं दिव्यं स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां। इदं मधुस्नानं करिष्यामि। शिवलिंगाय नमो नमः। हरिः ओम। ओम पयस्वस्तु समुद्भूतं मधुराम्लशशिप्रभं दद्यानीतमयानीतं स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां। ओदो सदाशिवाय नमः। ओम सदाशिवाय नमः। साम्ब सदाशिवाय नमः। हरि ओम। पंचामृतं मयानीतं पयोदधिकृतं मधु शर्करया समायुक्तं स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां। पंचामृतं मयानीतं पयोदधिकृतं मधु शर्करया समायुक्तं स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां। हरिः ओम। पंचामृतं मयानीतं पयोदधिकृतं मधु शर्करया समायुक्तं स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां। स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां। ओम हर हर महादेव। नाउ वाटर। ओम गंगे यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां। काशी भागीरथी सर्वतीर्थाथी जलं सन्निध्यौ कुरु। ओम श्रीनारायण नमः। श्री पशुपते नमः। श्री गंगाधराय नमः। जटाधराय नमः। ओम अष्टांगलिंगाय नमः। ओम सदाशिवाय नमो नमः। ओम लिंगाष्टकाय नमो नमः। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती। पानी और हो गए। अब तिलक तिलक करना है। भस्म का अच्छे से तिलक करके। हरिः ओम। चंदनं तु महत्पुण्यं पवित्रं भावनासनम् आपदं हरति नित्यं लक्ष्मी तिष्ठतु सर्वदा। ओम सदाशिवाय नमः। साम

0: पिनाकहस्ताय सनातनाय यक्षस्वरूपाय जटाहराय देवाय दिगाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगराय महेश्वराय देवाय दिव्याय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय।
1: तो चावल और चावल भी लगाइए सब लौंग इलायची वस्त्र जनेऊ। ओम मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय। ओम माल्यादिनी सुगंधिनी मालत्यादिनी वै प्रभो मया नीतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां पूजार्थं प्रतिगृह्यतां नानः रत्नानि सुगंधिनी फलानि च मया दत्तानि लेपार्थं पूजार्थं प्रतिगृह्यतां पुगीफलं मया दत्तं नागवल्लीर्दलयुक्तं एलाचूर्णादि संयुक्तं नागवल्लीर्चूर्णा संयुक्तं समर्पयामि। क्वाइंट्स ओम हिरण्यगर्भ गर्भस्थम हेम बीजम विभावसु अनंत पुण्यम फलम दद शांतिम प्रेक्ष्यमे दक्षिणाम समर्पयामि साम सदा शिवाय नमो नमः। वस्त्रम ओम लोकलज्जा निवारणे मया पिपादिते लख्य वस्त्रम समर्पयामि श्री नारायण साम सदा शिवाय नमः। बस अब धतुर की जगह में इसी को हम करें, इसको धतुर को स्मरण करके। हरि ओम धतुर सहित पुष्पादि समर्पयामि कान्नात कान्नात प्ररोहन्ति एवान दुर्वि प्रतनु सहस्त्रेण सतेन दुर्वाम समर्पयामि त्रिदलम त्रिनेत्रम त्रयायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्लपत्रम शिवार्पणम त्रिजनम ग्यारह टाइम चढ़ाइए त्रिजन्मम त्रिगुणाकारम सत्रियायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्लपत्र समार्पणम त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम सत्रियायुधम त्रिनेत्रम त्रियायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्लपत्र समार्पणम त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम सत्रियायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्लपत्रम शिवार्पणम। एवरीवन कैन पुट दिस वेरी गुड टुडे इफ समबडी हरि ही ओम क्या हो गए 11 टाइम्स। अच्छा ओम माल्यादिनी सुगंधिनी तिलक लगाइए सारे भगवान को तो पता है। कैन यू पास दैट थाली टू स्वामी जी। गजाननम भूतगणादि सेवितम कपित्त जम्बु फल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्री गमगणाधिपतये नमः। श्रीखन्नम चंदनम दिव्यम गंधाढ्यम सुमनोहरम बीलपेनम सुरश्रेष्ठम चंदनम प्रतिगृह्यताम श्री गमगणाधिपतये नमो नमः। सिंदूर भी लगा दीजिए। सिंदूरम शोभनम चैव कामदम प्रतिगृह्यताम सिंदूरम शोभनम चैव सौभाग्यम सुखवर्धनम शुभदम कामदम चैव सिंदूरम प्रतिगृह्यताम अक्षताश्च कुंकुमाक्ता शुभ्रा घुनाश्च निर्मला मया प्रपादिते देवतुभ्यं वासति प्रतिगृह्यताम। थोड़ा सा लाल व्हाइट में लाल बहुत अच्छा एक बिंदु लगाई थी बहुत। हरि ओम सांब सदा शिवाय नमः। ओम चंदनं तु महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनं आपदं हरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठतु सर्वदा। हरि ओम श्री सांब सदा शिवाय नमः। समवन कैन प्ले द बेल। ओम सांब सदा शिवाय नमः ना अगरबत्ती।

0: अच्छा,
1: शंकर भगवान
0: जय अगरबत्ती। वनस्पति रसद भूतो गंधाढ्यं गंधयुक्तं आग्रेय सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। इसको वन लीफ हियर एंड वाटर। वनस्पति रसद भूतो गंधाढ्यं गंधयुक्तं आग्रेय सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। सम वाटर। हरि ओम। कर्पूर गौरम कर
1: वाटर।
0: ओम ज्योतिर ज्योतिर अग्निर ज्योति स्वाहा। ओम ज्योतिर सूर्य वर्चर सूर्य स्वाहा। ओम अग्निर ज्योतिर वर्चर ज्योति स्वाहा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्घिमन गुरुवेदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। हरि ओम। ओम श्री परमेश्वराय नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते।

0: Ford Walker.
1: ओम प्राच्यै नमः सिंदूर भी डालिए। ओम पश्चिमाय नमः। ओम उत्तराय नमः। उत्तर दिशै नमः। ओम दक्षिणाय नमः। ओम ईशानाय नमः। ओम आग्नेय नमः। ओम वायव्ये नमः। ओम नैऋत्ये नमः। शानाय नमः। ओम भूतलाय नमः। नीचे ओम आकाशाय नमः। आकाश में बस अब फूल रख देंगे चारों दिशा में। नाउ फ्लावर, वी नीड टू हैव फ्लावर।
0: ब्रिंग इन 9 कलर्स फ्लावर्स फ्रॉम आवर गार्डन।
1: या दैट इज ऑलरेडी। हरि ओम। ओम सूर्याय नमः। ओम सोम सेता वाइट। ओम चंद्राय नमः। ओम भौमाय लाल रेड। ओम भौमाय नमः। भौमरेण ऑलराइट भौमाय नमः। नाउ ग्रीन। बुम बुदाय नमः। ओम बुम बुदाय नमः। ओ येलो। ओ ब्रिम बृहस्पतये नमः। नाउ व्हाइट डायमंड कलर। ओम राम ब्रिम रौ शुक्राय नमः। नाउ ब्लैक सनी कलर। ओम शमशनेश्वराय नमः। शमशनेश्वराय नमः। नाउ ब्लू। ओ ये ओम रामराहवे नमः। ब्राउन Oh, maybe the one like pinky style. Yeah, you got it? Okay. Yeah.
0: Where is the Vokai? Where is the
1: Basma? There is a small Katori. Where is that Basma? Bas. Om Kim Kedave Namaha. Bas. Bas. Ab Agni ko प्रज्वलित करके एक लकड़ी में रख के छोड़ देंगे उसमें। ओम चंद्रमा मनसो जात दक्षिण सूर्य अजायत श्रोता द्वायु ब्राण समघ्र अग्नि अजायत। ओम अग्नि सानिल्य गोत्र। ओम अग्नि सानिल्य गोत्र मेष ध्वज प्रामुखे मम सम्मुखो भवः। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात तक्षुर सूर्य अजायत श्रोता द्वायु प्राणस मुखारद अग्नि अजायत। बोलिए अग्नि देवता की जय। नाउ वी कैन सेट थ्री लकड़ी विथ घी थ्री स्टिक्स थ्री ओनली फर्स्ट थ्री डिफरेंट सेपरेट ओके। ओम प्रजापतये स्वाहा। ओम अग्नये स्वाहा। ओम धनंतरवे स्वाहा। Oh, now where is that long stick for the ghee? Oh, ghee ke liye. Sure. Om Prajapate Swaha.
0: Now this take it away.
1: Put it in your chest and when it says Swaha. Okay. जिसको जिसको भस्म लगाना बचा है उनको भी लगा दीजिए, ओ जो पीछे आए
0: रतन देवी सूरज देवी those who just came now put them till the gods from this here and where is this thali

ओम गणनांत्वा गणपति गुं हवामय फ्रेणांत्वा प्रेवती गुं हवामय बसुव आहमजानी गर्वधमा त्वमसि गर्वधम स्वाहा। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा स्वाहा। हरि ओम सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते स्वाहा। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। ओम श्रीमन महागणाधिपतये नमः स्वाहा। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यं नमः स्वाहा। उमा महेश्वराभ्यं नमः स्वाहा। शची पुरंदराभ्यं नमः स्वाहा। लक्ष्मी नारायणाभ्यं

ओम इष्ट देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम गुरुवे नमः स्वाहा, सर्वार्थ देवा सर्वतीर्थादि देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरंदकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु नवग्रहादि देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा सोधा नमस्तुते स्वाहा, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्यः धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्यः धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा, ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृता स्वाहा, ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृता स्वाहा, ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृता स्वाहा, ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् स्वाहा, ओम ब्रह्म

पुत्री ये विद्महे सरस्वती ये धीमहि तन्नो सरस्वती प्रचोदया स्वाहा। ओ महालक्ष्मी ये विद्महे विष्णु पत्नी ये धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदया स्वाहा। ओम देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदया स्वाहा। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुंडकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु स्वाहा। दिवाकराय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदया स्वाहा। ओम दश दिक्पालाय नमः स्वाहा। नमो दिव्य महादेव्य शिवाय सततम नमः। नमः प्रकृति भद्राय देवता देवाय स्मता प्रतिष्ठाम स्वाहा। ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमा नयति कस्सन सशत्त शोक सुभद्रिकां काम्बिलवासिनीं स्वाहा। एहे ब्रह्मन्न महादेवाय नमः स्वाहा। हरि ओम नीलकंठाय नमः स्वाहा। पशुपत्ये नमः स्वाहा। अघोराय नमः स्वाहा। साम्ब सदाशिवाय नमः स्वाहा। चारवेदाय नमः स्वाहा। ऋग्वेदाय नमः स्वाहा। सामवेदाय नमः स्वाहा। यजुर्वेदाय नमः स्वाहा। अथर्ववेदाय नमः स्वाहा। अठारपुराणाय नमः स्वाहा। सकल उपनिषदाय नमः स्वाहा। बद्रीनाथाय नमः स्वाहा। केदारनाथाय नमः स्वाहा। ठाकुरपुरे नमः स्वाहा। सोमनाथाय नमः स्वाहा। अमरनाथाय नमः स्वाहा। नाउ वी गोइंग थाउजेंड्स ओम स्थिराय नमः स्वाहा। ओम स्थाणवे नमः स्वाहा। ओम प्रभवे नमः स्वाहा। ओम भीमाय नमः स्वाहा। ओम वरदाय नमः स्वाहा। ओम प्रभवाय नमः स्वाहा। ओम प्रवराय नमः स्वाहा। ओम वरदाय नमः स्वाहा। ओम सर्वात्मने नमः स्वाहा। ओम सर्वविख्याताय नमः। ओम सर्वस्मै नमः स्वाहा। ओम सर्वकराय नमः स्वाहा। ओम भवाय नमः स्वाहा। ओम जटिने नमः स्वाहा। ओम चर्मिणे नमः स्वाहा। ओम शिखंडिने नमः स्वाहा। ओम सर्वांगनाय नमः स्वाहा। ओम सर्वभावनाय नमः स्वाहा। ओम हराय नमः। ओम हरिणाख्याय नमः स्वाहा। ओम सर्वभूतहराय नमः स्वाहा। ओम प्रभवे नमः स्वाहा। ओम प्रवित्याय नमः स्वाहा। ओम निवित्ताय नमः स्वाहा। ओम नियताय नमः स्वाहा। ओम शाश्वताय नमः स्वाहा। ओम ध्रुवाय नमः स्वाहा। ओम श्मशानवासिने नमः स्वाहा। ओम भगवते नमः स्वाहा। ओम खजराय नमः स्वाहा। ओम गोचराय नमः स्वाहा। ओम अर्दनाय नमः स्वाहा। अभिवाद्याय नमः स्वाहा। महाकर्मणे नमः स्वाहा। तपस्विने नमः स्वाहा। भूतभावनाय नमः स्वाहा। उन्मत्त वेश प्रच्छन्नाय नमः स्वाहा। ओम सर्वलोक प्रजापतये नमः स्वाहा। ओम महारूपाय नमः स्वाहा। महाकायाय नमः स्वाहा। ओम वृषरूपाय नमः स्वाहा। महायसे नमः स्वाहा। महात्मने नमः स्वाहा। सर्वभूतात्मने नमः स्वाहा। विश्वरूपाय नमः स्वाहा। महाहणवे नमः स्वाहा। ओम लोकपालाय नमः स्वाहा। ओम अंतरहितमने नमः स्वाहा। ओम प्रसादाय ओम हृगर्भये नमः स्वाहा। ओम पवित्राय नमः स्वाहा। ओम महते नमः स्वाहा। ओम नियमाय नमः स्वाहा। नियमाश्रिताय नमः स्वाहा। ओम सर्वकर्मणे नमः स्वाहा। ओम स्वयंभूताय नमः स्वाहा। ओम आदये नमः
स्वाहा ओम आदिकराय नमः स्वाहा ओम निधये नमः स्वाहा ओम सहस्रथाय नमः स्वाहा विशालाक्षाय नमः ओम सोमाय नमः स्वाहा ओम नक्षत्र साधकाय नमः स्वाहा ओम चंद्राय नमः स्वाहा ओम सूर्याय नमः स्वाहा ओम शनये नमः स्वाहा ओम केतवे नमः स्वाहा ओम ग्रहाय नमः स्वाहा ओम ग्रहपतये नमः स्वाहा ओम वराय नमः स्वाहा ओम अत्रये नमः स्वाहा अत्र नस्मकर्ते नमः स्वाहा ओम मृगबाणपाण्याय नमः स्वाहा ओम अगनाय नमः स्वाहा ओम महातपसे नमः स्वाहा ओम घोर तपसे नमः स्वाहा ओम अदीनाय नमः स्वाहा ओम दीन साधकाय नमः स्वाहा सम्मत सरकाराय नमः स्वाहा ओम मंत्राय नमः स्वाहा ओम प्रमाणाय नमः स्वाहा ओम परमात तपसे नमः स्वाहा ओम योगिने नमः स्वाहा ओम यज्ञाय नमः स्वाहा महामीजाय नमः स्वाहा महारेतसे नमः स्वाहा ओम गणपतये नमः स्वाहा दिग्वाससे नमः स्वाहा ओम कामाय नमः स्वाहा मंचवेद नमस्ते नमः स्वाहा परमाय मंत्राय नमः स्वाहा सर्वभावकराय नमः स्वाहा ओम हराय नमः स्वाहा ओम कमंडलुधराय नमः स्वाहा ओम धनुन्ये नमः स्वाहा ओम बाणहस्ताय नमः स्वाहा ओम कपालवते नमः स्वाहा ओम असनये नमः स्वाहा सतघ्रिने नमः स्वाहा ओम खंगिने नमः स्वाहा पट्टिसिने नमः स्वाहा आयुधिने नमः स्वाहा महते नमः स्वाहा सुवस्ताय नमः स्वाहा सुरूपाय नमः स्वाहा ओम तेजसे नमः ओम तेजकराय निधये नमः स्वाहा उष्णीषिणे नमः स्वाहा शुभक्राय नमः स्वाहा उद्ग्राय नमः स्वाहा ओम विनताय नमः स्वाहा ओम दीर्घाय नमः स्वाहा ओम ऋषिकेशाय नमः स्वाहा ओम हरिकेशाय नमः स्वाहा सुतीर्थाय नमः स्वाहा ओम कृष्णाय नमः स्वाहा श्रृंगालरूपाय नमः स्वाहा ओम सिद्धार्थाय नमः ओम मुंडाय नमः ओम सर्वशुभंकराय नमः स्वाहा ओम अजाय नमः स्वाहा ओम बहुरूपाय नमः स्वाहा ओम गंधधारिणे नमः स्वाहा ओम कर्पूरदिने नमः स्वाहा ऊर्ध्वरेतसे नमः स्वाहा ऊर्ध्वलिंगाय नमः स्वाहा ऊर्ध्वसाये नमः स्वाहा नवस्थलाय नमः स्वाहा त्रिजटिने नमः स्वाहा चिरवाससे नमः स्वाहा ओम रुद्राय नमः ओम सेनापतये नमः ओम विभवे नमः ओम अहस्वराय नमः ओम नक्तस्वराय नमः स्वाहा ओम तिन्मगये नमः स्वाहा ओम सूचवर्षाय नमः स्वाहा शुभचर्षाय नमः स्वाहा ओ गजग्ने नमः स्वाहा ओम पाणिने नमः स्वाहा ओम दैत्यग्ने नमः स्वाहा ओम कालाय नमः स्वाहा ओम लोकदात्रे नमः स्वाहा ओम गुणकाराय नमः स्वाहा सिंहादूलरूपाय नमः स्वाहा आर्धचम्बावरावृत्ताय नमः स्वाहा कालयोगिने नमः स्वाहा महानादाय नमः स्वाहा ओम सर्वकामाय नमः स्वाहा ओम चतुष्पदाय नमः स्वाहा ओम निशाचराय नमः स्वाहा ओम प्रेतचारिणे नमः स्वाहा ओम भूतचारिणे नमः स्वाहा ओम महेश्वराय नमः स्वाहा ओम बहुभूताय नमः स्वाहा ओम बहुधराय नमः स्वाहा ओ सोनार्वे नमः स्वाहा ओ अमिताय नमः स्वाहा ओम गतये नमः स्वाहा ओम नित्यप्रियाय नमः स्वाहा नित्यनर्तनाय नमः स्वाहा नर्तकाय नमः स्वाहा सर्वलालसाय नमः स्वाहा ओम घोराय नमः स्वाहा ओम महातपसे नमः स्वाहा ओम पाशाय नमः स्वाहा ओम नित्याय नमः स्वाहा ओम गिरिरुहाय नमः स्वाहा ओम नवसे नमः स्वाहा ओम सहस्त्रताय नमः स्वाहा ओम विजयाय नमः स्वाहा ओम व्यवसाय नमः स्वाहा अंतरिद्याय नमः स्वाहा ओम अतिंद्राय नमः स्वाहा अघर्णनाय नमः स्वाहा ओम घर्षणात्मने नमः स्वाहा यगने नमः
स्वाहा कामनाशकाय।

0: नमः स्वाहा, दक्ष गपाहाय नमः स्वाहा, ओम सुसहाय नमः स्वाहा, मध्यमाय नमः स्वाहा, तेज पहारिणे नमः स्वाहा, बलग्ने नमः स्वाहा, मुदिताय नमः स्वाहा, अर्थानाय नमः स्वाहा, अजिताय नमः स्वाहा, अवराय नमः स्वाहा, गंभीर घोषय नमः स्वाहा, गंभीराय नमः स्वाहा, गंभीर बलहानाय नमः स्वाहा, न्यग्नो रूपधराय नमः स्वाहा, न्यग्रुधाराय नमः स्वाहा, ओम वृक्षकर्णस्थिराय नमः स्वाहा, ओम विभवे नमः स्वाहा, सुतीक्ष्णदर्शनाय नमः स्वाहा, महाकायाय नमः स्वाहा, महाननयाय नमः स्वाहा, विश्वक्षणाय नमः स्वाहा, ओम हरये नमः स्वाहा, यज्ञाय नमः स्वाहा, संयुगापीडवाहनाय नमः स्वाहा, तीक्ष्णातापाय नमः स्वाहा, ओम हयर्षाय नमः स्वाहा, सहायाय नमः स्वाहा, कर्मकालविदाय नमः स्वाहा, विष्णुप्रसादिताय नमः स्वाहा, यज्ञाय नमः स्वाहा, ओम समुद्राय नमः, ओम बड़मुखाय नमः स्वाहा, उतासनसहासाय नमः स्वाहा, उतासनसहायाय नमः स्वाहा, ओम प्रशान्तन्वे नमः स्वाहा, उतासनाय नमः स्वाहा, उग्रतेजसे नमः स्वाहा, महातेजसे नमः स्वाहा, जन्याय नमः स्वाहा, बीजकालविदे नमः स्वाहा, ओम ज्योतिषायनाय नमः स्वाहा, ओम सिद्धये नमः स्वाहा, सर्वविग्रहाय नमः स्वाहा, ओम सिखिने नमः स्वाहा, ओम मुनिने नमः स्वाहा, जटिने नमः स्वाहा, जलिने नमः स्वाहा, ओम मूर्तिजाय नमः स्वाहा, मूर्धजाय नमः स्वाहा, ओम बलिने नमः स्वाहा, बैनविने नमः स्वाहा, ओम प्रणविने नमः स्वाहा, ओम तालिने नमः स्वाहा, ओम खलिने नमः, ओम कलंककटाय नमः स्वाहा, ओम नक्षत्र विग्रहहस्ताय नमः स्वाहा, गुणबुद्धये नमः स्वाहा, ललाय नमः स्वाहा, ओम अगमाय नमः स्वाहा, ओम प्रजापतये नमः स्वाहा, ओम विश्वाहवे नमः स्वाहा, ओम विभागाय नमः स्वाहा, ओम सर्वगाय नमः स्वाहा, अमुखाय नमः स्वाहा, ओम विमोचनाय नमः स्वाहा, सुरासुराय नमः स्वाहा, हिरण्यकवचजताय नमः स्वाहा, मेदजताय नमः स्वाहा, बलचारिणे नमः स्वाहा, महीचारिणे नमः स्वाहा, ओम श्रुताय नमः स्वाहा, ओम सूर्य तुर्य विदोनिताय नमः स्वाहा, सर्वतुद्ध परिग्रहाय नमः स्वाहा, सर्वतुर्य विनोदिने नमः स्वाहा, व्यालरूपाय नमः स्वाहा, गुहावासिने नमः स्वाहा, गुहाय नमः स्वाहा, मालिने नमः स्वाहा, तरंगविदे नमः स्वाहा, त्रिदशाय नमः स्वाहा, त्रिकालरहिते नमः स्वाहा, कर्म संबंध विवोचनाय नमः स्वाहा, असुरेन्द्रानंदवदाय नमः स्वाहा, ओम युधि शत्रुविनाशनाय नमः स्वाहा, सांग प्रसादाय नमः स्वाहा, दुर्वासने नमः स्वाहा, सर्वार्धिनिशीषाय नमः स्वाहा, प्रस्कंदाय नमः स्वाहा, यज्ञ विभागदे नमः स्वाहा, अतुल्याय नमः स्वाहा, यज्ञ विभागदाय नमः स्वाहा, सर्वसवाय नमः स्वाहा, सर्वचारिणे नमः स्वाहा, दुर्वासे नमः स्वाहा, ओम वासराय नमः स्वाहा, अमराय नमः स्वाहा, ओम हेमाय नमः स्वाहा, ओम हेमकाराय नमः स्वाहा, निष्कमाय नमः स्वाहा, ओम सर्वधारिणे नमः स्वाहा, धरोदत्ताय नमः स्वाहा, लोहिताक्षाय नमः स्वाहा, ओमाक्षाय नमः स्वाहा, विजयाक्षाय नमः स्वाहा, विशारदाय नमः स्वाहा, सहस्राय नमः स्वाहा, ओम निग्राय नमः स्वाहा, ओम कर्त्रे नमः, ओम सर्वपरिचरणिसाय नमः स्वाहा, सर्वपरिचिरनिवासानाय नमः स्वाहा, मुख्याय नमः स्वाहा, अमुख्याय नमः स्वाहा, ओम देहाय नमः स्वाहा, ओम कालाय नमः स्वाहा, सर्वकामदाय नमः स्वाहा, सर्वकाल प्रसादाय नमः स्वाहा, ओम सुबलाशाय नमः स्वाहा, ओम बलरूपधीते नमः स्वाहा, सर्वकामवराय नमः स्वाहा, ओम सर्वकाय नमः स्वाहा, सर्वतोमुखाय नमः स्वाहा, आकाशनिवासाय नमः स्वाहा, निपातिने नमः स्वाहा, अवसाय नमः स्वाहा, ओम खगाय नमः स्वाहा, ओम रौद्रूपाय नमः स्वाहा, अंशवे नमः स्वाहा, आदित्याय नमः स्वाहा, बहुरश्मे नमः स्वाहा, ओम सुवर्चिने नमः स्वाहा, ओम वसुवेगाय नमः स्वाहा, महावेगाय नमः स्वाहा, मनोवेगाय नमः स्वाहा, निशाचराय नमः स्वाहा सर्ववासिने नमः स्वाहा श्रेयवासिने नमः स्वाहा उपदेशकराय नमः स्वाहा ओम अकराय नमः स्वाहा ओम मुनये नमः स्वाहा आत्मनिरलोकनाय नमः स्वाहा ओम संभवाय नमः स्वाहा संमग्नाय नमः स्वाहा सहस्रदाय नमः स्वाहा ओम पक्षिणे नमः स्वाहा ओम पक्षरूपाय नमः स्वाहा अधिशिवताय नमः स्वाहा विषमतमये नमः स्वाहा ओम उन्मादाय नमः स्वाहा ओम मदनाय नमः स्वाहा ओम कामाय नमः स्वाहा ओम असस्ताय नमः स्वाहा ओम अर्थकाराय नमः स्वाहा ओम असये नमः ओम वामदेवाय नमः ओम वामदेवाय नमः ओम वामाय नमः स्वाहा ओम प्राचे नमः ओम स्वाहा ओम दक्षिणाय नमः ओम स्वाहा ओम वामनाय नमः स्वाहा ओम सिद्धयोगिने नमः स्वाहा ओम महर्षये नमः स्वाहा ओम सिद्धार्थाय नमः स्वाहा ओम सिद्धसाधकाय नमः स्वाहा वेच्छवे नमः स्वाहा भिक्षुरूपाय नमः स्वाहा विपणाय नमः स्वाहा मृदवे नमः स्वाहा अभयनाय नमः स्वाहा विशाखाय नमः स्वाहा षष्ठीभागाय नमः स्वाहा ओम गवापतये नमः स्वाहा भद्रहस्ताय नमः स्वाहा ओम पिनाकाय नमः स्वाहा सदाशिवाय नमः स्वाहा नाउ इन
1: 360
0: हो गया जस्ट वी फिनिश
1: yeah
0: 700 so this is good meditation keep continuing meditation in Kali Yuga om biskambine namaha swaha chamustamanaaya namaha swaha vrittavittakaraaya namaha swaha taalaaya namaha swaha madave namaha swaha madukulochanaaya namaha swaha vachaspataaya namaha swaha vajasenaaya namaha swaha nityamaasira pujitaaya namaha swaha brahmachariine namaha swaha lokachariine namaha स्वाहा सर्वचारिणे नमः स्वाहा विचारविदे नमः स्वाहा ओम ईशानाय नमः स्वाहा ओम ईश्वराय नमः स्वाहा ओम कालाय नमः स्वाहा निशाचरिणे नमः स्वाहा पिनाकवृत्ते नमः स्वाहा ओम निमित्तस्थान नमः स्वाहा ओम निमित्ताय नमः स्वाहा ओम नंदये नमः स्वाहा ओम नंदिकराय नमः स्वाहा ओम हरये नमः स्वाहा ओम नंदीश्वराय नमः स्वाहा ओम नंदिने नमः स्वाहा ओम नंदाय नमः स्वाहा नंदीगोवर्धनाय नमः स्वाहा ओम भागहरिणे नमः स्वाहा नियश्रिये नमः स्वाहा ओम कालाय नमः स्वाहा ओम ब्रह्माय नमः स्वाहा पितामहाय नमः स्वाहा चतुर्मुखाय नमः स्वाहा ओम महालिंगाय नमः स्वाहा ओम चारुलिंगाय नमः स्वाहा ओम लिंगाध्यक्षाय नमः स्वाहा ओम सुराध्यक्षाय नमः स्वाहा ओम योगाध्यक्षाय नमः स्वाहा युगवहाय नमः स्वाहा बीजाध्यक्षाय नमः स्वाहा बीजकर्त्रे नमः स्वाहा अध्यात्मनागतनाय नमः स्वाहा बलाय नमः स्वाहा इतिहासाय नमः स्वाहा सकल्पाय नमः स्वाहा गौतमाय नमः स्वाहा निशकराय नमः स्वाहा दम्भाय नमः स्वाहा ओम अमदाय नमः स्वाहा ओम वेदम्भ्याय नमः स्वाहा ओम वैश्याय नमः स्वाहा वसकराय नमः स्वाहा कलये नमः स्वाहा ओम लोकर्ते नमः स्वाहा ओम पशुपतये नमः स्वाहा ओम महाकर्ते नमः स्वाहा ओम अनौषधाय नमः स्वाहा ओम अक्षराय नमः स्वाहा ओम परमाय नमः स्वाहा ओम परमाय ब्राह्मणे नमः स्वाहा ओम बलवते नमः स्वाहा ओम शुक्राय नमः स्वाहा ओम नित्यै नमः ओम अनित्यै नमः ओम शुद्धात्मने नमः स्वाहा ओम शुद्धाय नमः स्वाहा ओम मान्याय नमः स्वाहा ओम गतागताय नमः स्वाहा ओम बहुप्रसदाय नमः स्वाहा ओम सुप्रश्नाय नमः स्वाहा ओम दर्पणाय नमः स्वाहा ओम अमित्रजिते नमः स्वाहा ओम वेदकाराय नमः स्वाहा ओम मंचकाराय नमः स्वाहा ओम विदिशे नमः स्वाहा ओम समरदर्दनाय नमः स्वाहा ओम महाभिनिशाय नमः स्वाहा ओम महाघोराय नमः स्वाहा ओम वसिने नमः स्वाहा ओमकराय नमः स्वाहा अमनिज्वलाय नमः स्वाहा महाज्वलाय नमः स्वाहा ओम आदिविदुम्नाय नमः स्वाहा ओम हुताय नमः स्वाहा ओम विषे नमः स्वाहा विषाय नमः स्वाहा शंकराय नमः ओम नित्यवर्षिने सो नमः ओ धूम्रकेताय नमः स्वाहा ओम नीलपराय नमः स्वाहा ओम आंगुलद्याय नमः स्वाहा ओम शोभनाय नमः स्वाहा ओम निवर्गाय नमः स्वाहा स्वस्तिदाताय नमः ये तो है शिष्याय नमः ओम स्वतिभावाय नमः ओम भागिने नमः ओम भागकराय नमः स्वाहा ओम लघवे नमः स्वाहा उसनाय नमः स्वाहा महंकराय नमः स्वाहा महागरपराय नमः स्वाहा कृष्णवचाय नमः स्वाहा सुवर्णाय नमः स्वाहा ओम सर्वदेहिनाम इंद्रियाय नमः स्वाहा ओम महापादकाय नमः स्वाहा महाहस्ताय नमः स्वाहा महाकायाय नमः स्वाहा महायशसे नमः स्वाहा महाग्रभूमिये नमः स्वाहा महामात्राय नमः स्वाहा महानेत्राय नमः स्वाहा निशालाय नमः स्वाहा महाकांताय नमः स्वाहा महाकर्णाय नमः स्वाहा महेष्टाय नमः स्वाहा हणवे नमः स्वाहा महाहणवे नमः स्वाहा मानसाय नमः स्वाहा महागंपवे नमः स्वाहा महागविसाय नमः स्मरसान भाजे नमः महाभक्षे नमः ओम महेश्वराय नमः स्वाहा मरुरसकाय नमः स्वाहा अंतरात्मने नमः स्वाहा मृगालाय नमः स्वाहा ओम लंबानाय नमः स्वाहा ओम लंबिस्थोसाय नमः स्वाहा महामायाय नमः स्वाहा ओम स्वाहा मयोपदानिये नमः स्वाहा पयोनिधये नमः स्वाहा महादंताय नमः स्वाहा महाद्रष्टाय नमः स्वाहा महाजिह्वाय नमः स्वाहा ओम महामुखाय नमः स्वाहा महानखाय नमः स्वाहा महासुराय नमः स्वाहा महाकोशाय नमः स्वाहा महाजटाय नमः स्वाहा प्रसन्नाय नमः स्वाहा ओम प्रसादाय नमः स्वाहा अपवत्याय नमः स्वाहा गिरिसादनाय नमः स्वाहा स्नेहाय नमः स्वाहा ओम अहस्रयाय नमः स्वाहा ओम अजिताय नमः स्वाहा महामुनये नमः स्वाहा वृक्षकाराय नमः स्वाहा वृक्षकेतवे नमः स्वाहा अनलाय नमः स्वाहा बाहुबायनाय नमः स्वाहा गंडलिने नमः स्वाहा मेरुदाग्ने नमः स्वाहा मेरुधाम्ने नमः स्वाहा देवादि नमः स्वाहा देवाधिपतये नमः स्वाहा अथर्ववर्षीयाय नमः स्वाहा सामवैशीयाय नमः स्वाहा साक्षसामिश्राय नमः स्वाहा ऋक्सहस्रामितिक्षणाय नमः स्वाहा ओम यजुपादभुजाय नमः स्वाहा ओम गुह्याय नमः स्वाहा प्रकाशाय नमः स्वाहा जंगमाय नमः स्वाहा अमोघराय नमः स्वाहा प्रसादाय नमः स्वाहा अभिज्ञाय नमः स्वाहा ओम सुदर्शनाय नमः स्वाहा ओमकराय नमः स्वाहा ओम प्रियाय नमः स्वाहा ओम सर्वाय नमः स्वाहा कनकाय नमः स्वाहा कंचन छवये नमः स्वाहा ओम नाभये नमः स्वाहा नंदिकाराय नमः स्वाहा ओम भावाय नमः स्वाहा पुष्कर स्थापते नमः स्वाहा ओम स्थिराय नमः स्वाहा द्वादशाय नमः स्वाहा ओम त्रासनाय नमः स्वाहा ओम आद्याय नमः स्वाहा ओम यज्ञाय नमः स्वाहा यज्ञ सहिताय नमः स्वाहा नक्तम नमः ओम कलये नमः स्वाहा ओम कालाय नमः स्वाहा ओम मकराय नमः स्वाहा ओम कालपूजिताय नमः स्वाहा ओम सगणाय नमः स्वाहा ओम गुणकराय नमः स्वाहा ओम भूतवाहन सारथे नमः स्वाहा ओम भस्माय नमः स्वाहा भस्मधाराय नमः स्वाहा भस्मगोतने नमः स्वाहा भस्मसयाय नमः स्वाहा भस्मगोतने नमः स्वाहा भस्मभूताय नमः स्वाहा ओम तरवे नमः स्वाहा ओम गणाय नमः स्वाहा लोकपालाय नमः स्वाहा अलोकाय नमः स्वाहा अमात्मने नमः स्वाहा ओम सर्वपूजिताय नमः स्वाहा ओम शुक्लाय नमः स्वाहा त्रिशुकाय नमः स्वाहा संपन्नाय नमः स्वाहा अशुचाय नमः स्वाहा भूत निविशिताय नमः स्वाहा ओम आश्रमासाय नमः स्वाहा क्रियावस्थाय नमः स्वाहा विश्वकर्मपतये नमः ओम ओम बराय नमः स्वाहा ओम विशाल शाखाय नमः स्वाहा ओम प्रतिष्ठाय नमः स्वाहा इट्स हाफ हाफ ऑफ द वे नाउ
1: ओके
0: हरि ओम ओम अम्बुजालाय नमः स्वाहा सुनिश्चलाय नमः स्वाहा कपिलाय नमः स्वाहा कपिशाय नमः स्वाहा शुक्लाय नमः स्वाहा आयुषे नमः स्वाहा ओम अपराय नमः स्वाहा ओम पराय नमः स्वाहा ओम गंधर्वाय नमः स्वाहा ओम आदित्ये नमः स्वाहा तक्षरताय नमः स्वाहा सुविज्ञाय नमः स्वाहा सुशारदाय नमः स्वाहा परशुधायुधाय नमः स्वाहा ओम देवाय नमः स्वाहा ओम सुशारदाय नमः स्वाहा परशुधायुधाय नमः स्वाहा ओम देवाय नमः स्वाहा ओम अनुकारणे नमः स्वाहा सुबान्धवाय नमः स्वाहा तुम्बणिदाय नमः स्वाहा महाक्रोधाय नमः स्वाहा उर्दरेतसे नमः स्वाहा जलेशयाय नमः स्वाहा उग्नाय नमः वसंकराय नमः स्वाहा ओम वंशाय नमः स्वाहा वंशनादानाय नमः स्वाहा अविन्दाय नमः स्वाहा अनिन्दिताय नमः स्वाहा सर्वांगरूपाय नमः स्वाहा मायाविने नमः स्वाहा ओम सुहृदाय नमः स्वाहा अनिलाय नमः स्वाहा अनल्लघाय नमः स्वाहा, बंधनाय नमः स्वाहा, बंधकर्ते नमः स्वाहा, सुबंध बीजाय नमः स्वाहा, सहसारगे नमः स्वाहा, सहज्ञानरथे नमः स्वाहा, सकारमानाय नमः स्वाहा, महाद्रष्टाय नमः स्वाहा, मायायुधाय नमः स्वाहा, बहुधानिन्त्याय नमः स्वाहा, ओम सर्वाय नमः स्वाहा, ओम शंकराय नमः स्वाहा, ओम अगनाय नमः स्वाहा, ओम अमरेशाय नमः स्वाहा, ओम महादेवाय नमः स्वाहा, ओम विश्वदेवाय नमः स्वाहा, ओम सुराग्रिणे नमः स्वाहा, अहिर्बुद्ध्याय नमः स्वाहा, अनिलाभाय नमः स्वाहा, शेखितानाय नमः स्वाहा, हविषे नमः, ओम अजय पातके नमः स्वाहा, अजय कपाते नमः स्वाहा, ओम कापिले नमः स्वाहा, तिसंके नमः स्वाहा, अजिताय नमः स्वाहा, ओम शिवाय नमः स्वाहा, ओम धनंतरे नमः स्वाहा, ओम धूमकेतवे नमः स्वाहा, ओम स्कंदगाय नमः स्वाहा, वैष्णवाय नमः स्वाहा, ओम धात्रे नमः स्वाहा, ओम शुक्राय नमः स्वाहा, ओम विष्णवे नमः स्वाहा, ओम मित्राय नमः स्वाहा, ओम तोष्ट्रे नमः स्वाहा, ओम ग्रीवाय नमः स्वाहा, ओम धराय नमः स्वाहा, ओम प्रभवाय नमः स्वाहा, ओम सर्वाय वाय नमः स्वाहा, सर्वगाय वायवे नमः स्वाहा, अर्थमे नमः स्वाहा, सवित्रे नमः स्वाहा, ओम रवये नमः स्वाहा, ओ संगे नमः स्वाहा, विधात्रे नमः स्वाहा, ओम मानधात्रे नमः स्वाहा, भूतभावनाय नमः स्वाहा, ओम विभवे नमः स्वाहा, ओम बणभिवायिने नमः स्वाहा, ओम सर्वकामगुणाय नमः स्वाहा, सर्वकामगुणवहाय नमः स्वाहा, पद्मनाभाय नमः स्वाहा, महागर्भाय नमः स्वाहा, चंद्रवस्त्राय नमः स्वाहा, अनिलाय नमः स्वाहा, अनलाय नमः स्वाहा, बलवते नमः स्वाहा, उपशांताय नमः स्वाहा, पुराणाय नमः स्वाहा, पुण्यसंजने नमः स्वाहा, ओम ए नाम स्वाहा, कुरुकर्त्रे नमः स्वाहा, ओम कुरुवासिने नमः स्वाहा, कुरुभूताय नमः स्वाहा, ओम गुणदोषाय नमः स्वाहा, ओम सर्वासाय नमः स्वाहा, धर्मचारिणी नमः स्वाहा, सर्वेषां प्राणिनां पतये नमः स्वाहा, ओम देवादेवाय नमः, सुमुख शक्ताय नमः स्वाहा, ओम सते नमः स्वाहा, ओम असते नमः स्वाहा, ओम सर्वरत्न वेद नमः स्वाहा, ओम कैलासगिरिवासिने नमः स्वाहा, हिमविद्नी संस्थाय नमः स्वाहा, हिमबद्धी सहस्रसाय नमः स्वाहा, ओम कुलहरिणे नमः स्वाहा, ओम कुलकत्रे नमः स्वाहा, ओम बहुविद्याय नमः स्वाहा, ओम बहुप्रदाय नमः स्वाहा, ओम वाणिज्याय नमः स्वाहा, ओम वरदकिने नमः स्वाहा, ओम वृक्षाय नमः स्वाहा, ओम वकीलाय नमः स्वाहा, ओम चंदनाय नमः स्वाहा, ओम छदाय नमः स्वाहा, ओम अलोलाय नमः स्वाहा, ओम सारग्रीवाय नमः स्वाहा, ओम महाजत्रे नमः स्वाहा, ओम अलोचाय नमः स्वाहा, महासौदाय नमः स्वाहा, सिद्धकारिणे नमः स्वाहा, ओम छदाय नमः स्वाहा, ओम चंदनाय नमः स्वाहा, ओम वृक्षाय नमः स्वाहा, वरदकिने नमः स्वाहा, वाणिज्याय नमः स्वाहा, वकीलाय नमः स्वाहा, बहुप्रदाय नमः स्वाहा, बहुविद्याय नमः स्वाहा, सिद्धार्थकारिणे नमः स्वाहा, सिद्धार्थ छंदो व्याकरणोत्तराय नमः स्वाहा, सिंहनादनाय नमः स्वाहा, सिंह धर्मराष्ट्राय नमः स्वाहा, सिंहगाय नमः स्वाहा, सिंहवाहनाय नमः स्वाहा, प्रभात्माने नमः स्वाहा, जगत्कालस्थनाय नमः स्वाहा, लोकहिताय नमः स्वाहा, अमतरवे नमः स्वाहा, सारंजाय नमः स्वाहा, नवचक्रांगाय नमः स्वाहा, अमकेतुमालिने नमः स्वाहा, सवानाय नमः स्वाहा, भूतालयाय नमः स्वाहा, भूतपतये नमः स्वाहा, अहोरात्राय नमः स्वाहा, अग्निदिताय नमः स्वाहा, सर्वभूतानां बाह्यत्रे नमः स्वाहा, अनिलाय नमः स्वाहा, विभवे नमः स्वाहा, भवनाय नमः स्वाहा, अमोघाय नमः स्वाहा, संगताय नमः स्वाहा, अश्वाय नमः स्वाहा, भोजनाय नमः स्वाहा, प्राणधाराय नमः स्वाहा, घृतमिदे नमः स्वाहा, अमिताय नमः स्वाहा, दक्षाय नमः स्वाहा, सत्कृताय नमः स्वाहा, युगधापिताय नमः स्वाहा, गोपालाय नमः स्वाहा, गोपतये नमः, ओम ग्रामाय नमः स्वाहा, गोमवर्चनाय नमः स्वाहा, ओम हरये नमः स्वाहा, ओम हिरण्यवाय नमः स्वाहा, प्रवेशिनाय नमः स्वाहा, गुहालपालाय नमः स्वाहा, प्रकृष्टारे नमः स्वाहा, महर्षाय नमः स्वाहा, जितकामाय नमः स्वाहा, जितेन्द्राय नमः स्वाहा, ओम गंधधराय नमः स्वाहा, उषताय नमः स्वाहा। 720
2: Left.
0: Yeah, no, no, we crossed. तपस्य शक्ताय नमः स्वाहा ओम रताय नमः स्वाहा ओम नराय नमः स्वाहा महागीताय नमः स्वाहा मायानित्याय नमः स्वाहा अप्सरो गणवेत्य शिवाय नमः स्वाहा महाकेतवे नमः स्वाहा महाधातवे नमः स्वाहा नेनक्यसुनुचारे नमः स्वाहा नेकसानुचराय नमः स्वाहा ओम चलाय नमः स्वाहा ओम आवेदनीयाय नमः स्वाहा आदेशयाय नमः स्वाहा सगंध सुखावहाय नमः स्वाहा तोरणाय नमः स्वाहा ओम तारणाय नमः स्वाहा ओम बाताय नमः स्वाहा परिधने नमः स्वाहा परिखेचराय नमः स्वाहा संयोगार्थ वर्धनाय नमः स्वाहा संयोगाय वर्धनाय नमः स्वाहा ओम विद्याय नमः स्वाहा अतिविद्याय नमः स्वाहा ओम अतिविद्याय नमः स्वाहा ओम गुणाधिकाय नमः स्वाहा ओम नित्यामात्म सहाय नमः स्वाहा देवासुरपतये नमः स्वाहा ओम पतये नमः स्वाहा ओम युक्ताय नमः स्वाहा ओम युक्तभावे नमः स्वाहा दिवि सुपर्णे नमः स्वाहा असडाय नमः स्वाहा उषपसाय नमः स्वाहा ओम ध्रुवाय नमः स्वाहा ओम हरिणाय नमः स्वाहा ओम हराय नमः स्वाहा आवर्तमाने भीवसे नमः स्वाहा ओम वसुश्रेष्ठाय नमः स्वाहा महापथाय नमः स्वाहा ओम शिरोमणि नमः स्वाहा सर्वलक्षणसिद्धाय नमः स्वाहा अक्षाय रथ योगिने नमः स्वाहा ओम सर्वयोगिने नमः स्वाहा महाबलाय नमः स्वाहा सामग्नाय नमः स्वाहा ओम अस्मायानाय नमः स्वाहा तीर्थदेवाय नमः स्वाहा महारथाय नमः स्वाहा निर्विजाय नमः स्वाहा ओम जीवनाय नमः स्वाहा ओम मंत्राय नमः स्वाहा ओम मंचाय नमः स्वाहा ओम शुभाक्षाय नमः स्वाहा बहुकर्णनाय नमः स्वाहा ओम रत्नभूताय नमः रत्नंगाय नमः स्वाहा महाबणिपाणिदेयाय नमः स्वाहा महार्णबणिपानविदे नमः स्वाहा ओम मूलाय नमः स्वाहा ओम विशालाय नमः स्वाहा ओम अमृताय नमः स्वाहा ओम व्यक्त्याय नमः स्वाहा ओम तपोनिधे नमः स्वाहा ओम आरोहराय नमः स्वाहा आधिरोहाय नमः स्वाहा शीलधारिणे नमः स्वाहा ओम महायसने नमः स्वाहा ओम सेनाकल्पाय नमः स्वाहा ओम महाकल्पाय नमः स्वाहा ओम योगाय नमः स्वाहा ओम युगकराय नमः स्वाहा ओम हरये नमः स्वाहा ओम युगरूपाय नमः स्वाहा ओम महारूपाय नमः ओम स्वाहा महानगनाय नमः स्वाहा ओम महानागनाहाय नमः स्वाहा ओम बधाय नमः ओम स्वाहा महानागगणाय नमः स्वाहा ओम न्याय निर्वाणाय नमः स्वाहा ओम मातपदाय नमः स्वाहा ओम पादाय नमः स्वाहा ओम पंडिताय नमः स्वाहा ओम अचलोपदाय नमः स्वाहा बहुमालाय नमः स्वाहा महामालाय नमः स्वाहा शशिनी हरसुलोचनाय नमः स्वाहा ओम विस्ताराय लवणाय कृपाय नमः स्वाहा ओम त्रियुगाय नमः स्वाहा ओम सफलदयाय नमः स्वाहा अवृतिलोचनाय नमः स्वाहा विष्णवे नमः स्वाहा मणिसिद्धाय नमः स्वाहा ओम जटाधराय नमः स्वाहा ओम बिंदवे नमः स्वाहा ओम विसर्गाय नमः स्वाहा सुमुखाय नमः स्वाहा ओम सराय नमः स्वाहा ओम सारुभूताय नमः स्वाहा ओम सर्वायुधाय नमः स्वाहा ओम सहायाय नमः स्वाहा निवेदनाय नमः स्वाहा सुखा जाताय नमः स्वाहा सुगंधाराय नमः स्वाहा महाधनुषे नमः स्वाहा गंधपालिने नमः स्वाहा ओम शंकाय नमः स्वाहा उत्थानाय नमः स्वाहा ओम मंथनाय बाहुबलये नमः स्वाहा मंधाननाय बहुलबावे नमः स्वाहा ओम सकलाय नमः स्वाहा सर्वलोचनाय नमः स्वाहा तलस्थालाय नमः स्वाहा करस्थालिने नमः स्वाहा ऊर्ध्वसमनाननाय नमः स्वाहा ओम महते नमः स्वाहा ओम छत्राय नमः स्वाहा सुछत्राय नमः स्वाहा वीरव्यातलकाय नमः स्वाहा सर्वाक्षताय क्रमाय नमः स्वाहा ओम मुन्नाय नमः स्वाहा ओम विरूपाय नमः स्वाहा ओम विकृताय नमः स्वाहा ओम दंडिने नमः स्वाहा ओम कुन्निने नमः स्वाहा विकुर्णवणाय नमः स्वाहा अरिहच्छाय नमः ओम कुंभाय नमः स्वाहा ओम ककुभाय नमः स्वाहा ओम वज्रिणे नमः स्वाहा ओम शतविजाय नमः स्वाहा सहस्रपादे नमः स्वाहा सहस्र सुभद्रे नमः स्वाहा ओम देवेन्द्रराय सर्वदेव मापाय नमः स्वाहा ओम गुरवे नमः स्वाहा ओम सहस्रभावे नमः स्वाहा ओम सर्वांगाय नमः स्वाहा ओम शरण्याय नमः स्वाहा ओम सर्वलोककृते नमः स्वाहा ओम पैत्राय नमः स्वाहा त्रिककुळे मत्राय नमः स्वाहा कनिष्ठाय नमः स्वाहा कृष्ण पिंगलाय नमः स्वाहा ब्रह्मा दंड विनिर्माताय नमः स्वाहा शतग्नि वास शक्तिमे नमः स्वाहा पद्म गर्भाय नमः स्वाहा महागर्भाय नमः स्वाहा ब्रह्म गर्भाय नमः स्वाहा अमजलोद्भवाय नमः स्वाहा गवस्ते नमः स्वाहा ब्रह्मकृते नमः स्वाहा ओम ब्राह्मणे नमः स्वाहा ब्रह्माविदे नमः स्वाहा ओम ब्राह्मणाय नमः स्वाहा ओम गतये नमः स्वाहा अनंत रूपाय नमः स्वाहा ओम नैकात्मने नमः स्वाहा ओ स्वयंभू तिग्म तेजसे नमः स्वाहा।

नमः स्वाहाय नमः स्वाहा महाप्रसादाय नमः स्वाहा दमनाय नमः स्वाहा शत्रुघ्ने नमः स्वाहा श्वेत पिंगलाय नमः स्वाहा प्रीतात्मने नमः स्वाहा परमात्मने नमः स्वाहा प्रयात्मने नमः स्वाहा प्रधानधृते नमः स्वाहा सर्वपार्श्वमुखाय नमः स्वाहा ओम त्रास्ख्याय नमः स्वाहा धर्मसाधारणे नमः ओम धर्मसाधारणोबराय जन्नमः स्वाहा चराचरात्मने नमः स्वाहा स्वच्छात्मने नमः स्वाहा अमृताय गोगविशेश्वराय नमः स्वाहा सारदस्याय नमः स्वाहा ओम वसुरादित्याय नमः स्वाहा विश्वदवस्ये नमः स्वाहा विश्वते सवितामृताय नमः स्वाहा ओम व्यासाय नमः स्वाहा ओम स्वर्गाय शृंगोपाय विस्ताराय नमः स्वाहा पर्यायोनराय नमः स्वाहा ओम ऋतये नमः स्वाहा ओम संवत्सराय नमः स्वाहा ओम मासाय नमः स्वाहा ओम पाक्ष्याय नमः स्वाहा ओम शंका समनाय नमः स्वाहा ओम कलाभ्यो नमः स्वाहा काष्ठाभ्यो नमः स्वाहा लवेभ्यो नमः स्वाहा मातृभ्यो नमः स्वाहा मुहूर्ताभ्य क्षेपाश्यो नमः स्वाहा ओम वर्णशिव्यो नमः स्वाहा क्षणभ्यो नमः स्वाहा विषम क्षेत्राय नमः स्वाहा 920 ओम विश्व क्षेत्राय नमः स्वाहा प्रजा विजाय नमः स्वाहा ओम लिंगाय नमः स्वाहा आद्याय निर्गमाय नमः स्वाहा ओम सती नमः स्वाहा ओम असती नमः स्वाहा ओम व्यक्ताय नमः स्वाहा ओम अभोक्ताय नमः स्वाहा पितृ नमः स्वाहा मातृ नमः स्वाहा ओम पितामहाय नमः स्वाहा स्वर्गद्वाराय नमः स्वाहा प्रजाद्वाराय नमः स्वाहा मोक्षद्वाराय नमः स्वाहा त्रिविष्टापाय नमः स्वाहा निर्वाणाय नमः स्वाहा ओम राधनाय नमः स्वाहा ओम ब्रह्मलोकाय नमः स्वाहा ओम पराय गत्ये नमः स्वाहा ओम देवासुर विनिमात्रे नमः स्वाहा देवासुर परायणाय नमः स्वाहा ओम देवासुर गुरुवे नमः स्वाहा ओम देवाय नमः स्वाहा देवासुर नमस्कृताय नमः स्वाहा देवासुर महामात्राय नमः स्वाहा देवासुर गणाक्षत्राय नमः स्वाहा देवासुर गणाध्यक्षाय नमः स्वाहा देवासुर गणैकृत्यै नमः स्वाहा देवी देवताय नमः स्वाहा देवादि देवताय नमः स्वाहा देवर्षये नमः स्वाहा देवासुर वरप्रदाय नमः स्वाहा देवासुरेश्वराय नमः स्वाहा ओम विश्वेश्वराय नमः स्वाहा ओम विश्वाय नमः स्वाहा देवासुर महेश्वराय नमः ओम सर्वदेवी मयाय नमः स्वाहा अंजिन्त्याय नमः स्वाहा देवतात्मने नमः स्वाहा आत्मसमवाय नमः स्वाहा उद्यमे नमः स्वाहा त्रिविक्रमाय नमः स्वाहा ओम वैदाय नमः स्वाहा विरजाय नमः स्वाहा नीरजाय नमः स्वाहा अमराय नमः स्वाहा इराय नमः स्वाहा ओम हस्तीश्वराय नमः स्वाहा बेग्राय नमः स्वाहा देवसीमाय नमः स्वाहा नरऋषभाय नमः स्वाहा विबुधाय नमः स्वाहा अग्नवराय नमः स्वाहा ओम सूक्ष्माय नमः स्वाहा सर्वदेवाय नमः स्वाहा तपोमाय नमः स्वाहा ओम सुक्ताय नमः स्वाहा सुयुक्ताय नमः स्वाहा शिवनाय नमः स्वाहा वज्रिणे नमः स्वाहा प्रसन्न प्रभाय नमः स्वाहा अभिवाय नमः स्वाहा जी ओम शिवनाय नमः स्वाहा वज्रिणे नमः स्वाहा प्रसन्न प्रभाय नमः स्वाहा ओम निसर्गाय नमः स्वाहा ओम पवित्राय नमः स्वाहा सर्व पावनाय नमः स्वाहा ओम श्रृंगिणे नमः स्वाहा ओम श्रृंगिणे नमः स्वाहा ओम गृहाय नमः स्वाहा अव्याय नमः स्वाहा प्रसन्न प्रभाय नमः स्वाहा वज्रिणे नमः स्वाहा शिवनाय नमः स्वाहा ओम कांताय नमः ओम निजाय सर्गाय नमः स्वाहा ओम पवित्राय नमः स्वाहा सर्व पावनाय नमः स्वाहा ओम श्रृंगिणे नमः स्वाहा ओम श्रृंग प्रियाय नमः स्वाहा प्रभुजे नमः स्वाहा राज राजाय नमः स्वाहा निराजायाय नमः स्वाहा अभिराय नमः स्वाहा अभिरामाय नमः स्वाहा सुरगणाय नमः स्वाहा विरामाय नमः स्वाहा सर्वसाधनाय नमः स्वाहा ललाटाक्षराय नमः स्वाहा विश्वदेवाय नमः स्वाहा हरिणाय नमः स्वाहा ब्रह्मवर्चसामाय नमः स्वाहा स्थावरणाम नमः स्वाहा स्थानपतये नमः स्वाहा स्थावरणाम पतये नमः स्वाहा नियमेन्द्रियवर्धनाय नमः स्वाहा सिद्धार्थाय नमः
स्वाहा सिद्ध भूतार्थाय नमः स्वाहा अंचित्याय नमः।

स्वाहा सत्यव्रताय नमः, स्वाहा शुचये नमः, स्वाहा व्रताधिपाय नमः, स्वाहा ओम परस्परे नमः, स्वाहा ओम ब्राह्मणे नमः, स्वाहा ओम भक्तानां पुरयाय गतवे नमः, स्वाहा ओम विमुक्ताय नमः, स्वाहा ओम मुक्ततेशसे नमः, स्वाहा ओम श्रीमते नमः, स्वाहा श्रीवर्धनाय नमः, स्वाहा ओम जगतपतये नमः, स्वाहा इति शिव सहस्त्र नामावली शिवार्पणम् स्वाहा। हर हर महादेव। शिव जी के 11 1008 तो शिव जी को करके फिर करते हैं। बचा है बचा, वेट वेट हाँ। तो 11 times we everyone chant Om Namah Shivaya Swaha together okay.

स्वाहा, ओम नमः शिवाय स्वाहा। तो खड़ा होके पुनावृत्ति देंगे कंप्लीटली। नाउ एवरीवन स्टैंड अप एंड दिस इज द फाइनल सेक्रीफाइस एंड हवन। ये पूरा है, ये तो यही है, यही है। नहीं यही ठीक है, इसी को धारण लगाता हूँ। हरि ही ओम। यहाँ पे बचा हुआ गिरा दीजिए। वट एवर लेफ्ट ओवर वी गोइंग टू ऑफर नाउ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते। ओम सर्व वै पूर्ण स्वाहा, सर्व वै पूर्ण स्वाहा, सर्व वै पूर्ण स्वाहा। ओम वसो पवित्रमसी, वसो पवित्रेण सहस्रधारेण देवस्त्वा पुनातु सविता वसो। ओम शांति शांति शांति। फिर ये हाथ में लगाइए। हरि ही ओम। दो हाथ में लगा के अग्नि में दिखा के। ओम बलमसी बलमहि देहि, मन्युमसी मन्युमहि देहि, सहोसी सहोमहि देहि, तेजोसी तेजोमहि देहि, वीर्यमसी वीर्यमहि देहि, ओजोसी ओजोमहि देहि, मन्युमसी मन्युमहि देहि। ओम शांति शांति शांति। द फाइनल पीस प्रेयर। ओम देव शांतिरंतरिक्ष गो शांति शांति रापा शांतिरो सधय

0: सद्गमय तमसो मा मृत्युर्मा लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। अकाल मृत्युहरणं सर्व्याधि विनाशनं विष्णु पाददकं भित्वा पुनर्जन्म न विद्यते चन्दनं तु महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनं आपदं हरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठतु सर्वदा। जय बोलिए ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को जय। सांब सदा शिव जी को जय। बोलिए प्यार से गणपति भगवान को जय। पशुपति नाथ को जय। सदा शिव को जय। चारो वेद को जय। महालक्ष्मी महासरस्वती को जय। चारो वेद को जय। सत्य सनातन धर्म को जय। विश्व गुरु महामंडलेश्वर महेश्वरानंद स्वामी जी को जय। हरि ओम।
1: पंडित जी धन्यवाद।
0: हरि ओम। थैंक यू वेरी मच।
1: एवरीवन डू योरसेल्फ, टेक योर फिंगर एंड लाइक दिस एंड मेक तिलक। ओके दे शुड डिप देयर
0: समथिंग। वी पुट लिटिल घी।

0: विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। हरि ओम।
1: विश्वगुरु महामंडलेश्वर परमहंस श्री स्वामी महेश्वरानंदजी गुरुदेव की जय।

0: आप और हम सब उपस्थित हुए हैं जो त्रिकालदर्शी हैं और आपको और हम सबको एक अच्छे रास्ते पर ले जा रहे हैं और आप और हम सब भगवान के बहुत करीब जा रहे हैं ऐसा आप और हम सब महसूस कर रहे हैं। तो गुरुदेव के चरणों में शत शत वंदन प्रणाम। गुरुदेव आपकी आज्ञा के अनुसार मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि यज्ञ हवन पूजन से आपके जीवन में किस प्रकार से परिवर्तन आ सकता है। आप और हम सब जब भगवान की पूजा करते हैं भगवान के चरण में जाते हैं गुरुदेव की शरण में जाते हैं
1: नाउ वी डोंट नो एनीथिंग वी वेर ओनली लिसनिंग टू योर वॉइस। अनुवाद करता हूं। सो द पंडित जी सेठ
2: पंडित जी आसमंता
1: फर्स्ट ऑफ द एडोरेशन टू अवर गुरु परंपरा गुरुदेव
2: गुरु परंपरांक फेस्ट के तिस्तलेतेत
1: देन सेड वी आर ऑल ब्लेस्ड वन
2: ते मंत हज मिंद आदोत्तक वजुंग
1: दैट वी आर ऑल हियर टुगेदर
2: एजुट लेहतुंक इत
1: And that we are here in the shelter of the Gurudev.
2: Hogy Gurudev hajlékában lehetünk.
1: Same time that he mentioned about 8.4 million different kind of lives.
2: Megemlítette a 8,4 millió létformát.
1: But finally we got a human life.
2: És annak a végén az emberit.
1: Human life should be very pure.
2: Az emberi életnek nagyon tisztának kell lennie.
1: You have to come to the God as pure you were.
2: Tisztán kell jönni Istenhez.
1: So he said we are lucky.
2: Azt mondta, szerencsések vagyunk.
1: And we are going to have some havan yagya puja
2: havanat yagya pujat fogunk gyakorolni
1: and so let's go what he said in short sentences theek hai thoda bolna taki pura bataye
0: aap aur sab hum sab yagya aur havan pujan ke bare mein janenge yagya ko karne se parmatma ke bahut hi nazdeek aap aur hum sab pahunch sakte hain
1: While making the yagya,
2: yagyát végzünk,
1: ceremonies, we will have a easy access to God.
2: Ceremóniák által könnyen hozzáférünk Istenhez.
0: जीवन में आने वाले जितने भी परिवर्तन हैं, जितने भी उतार चढ़ाव हैं, बहुत सारी कठिनाइयां हैं, उन सब को दूर करने के लिए शास्त्रों के अंदर वेदों के अंदर मंत्र और यज्ञ की एक विधि बताई गई है। अगर उस पूजन को उस विधि को और उस यज्ञ को सही विधि से सही प्रकार से अगर किया जाता है तो अपने जीवन की वो कठिनाइयां निश्चित रूप से दूर होती है।
1: इन लाइफ मैनी टाइम्स There's up and down.
2: Életben sokszor fe és lefelé szállunk.
1: There are different circumstances, different kind of situations.
2: Különböző körülmények, helyzetek vannak.
1: But through this, doing the yagyas, ceremonies, it will lead us to our destination.
2: Jagyák és ceremóniák által a célunkhoz érünk.
0: ये एक प्रकार का विज्ञान है। यज्ञ कुंड की जो गुरुदेव ने बताया कि वास्तु शास्त्र के अनुसार उसका निर्माण होना चाहिए और साक्षात भगवान पुरुषोत्तम का मुंह माना गया है। उस मुंह के अंदर मंत्रों के माध्यम से जब अग्नि के अंदर आहुतियां प्रदान की जाती हैं, तो अग्नि जो है वो उन आहुतियों को

0: साक्षात पुरुषोत्तम परमात्मा के चरणों में अर्पित करती है और आप जिस मनोभावना से वो आहुति देते हैं उस आहुति को भगवान स्वीकार करते हैं और आपकी मन की इच्छा पूरी करते हैं.
1: अकॉर्डिंग टू द दिस इज साइंस
2: टू द मैन
1: वैदिक साइंस
2: वैदिक टू द मैन
1: अकॉर्डिंग टू द वास्तु शास्त्र एज I taught before, he mentioned.
2: A vastu shastra szerint, ahogy ezt korábban mondtam.
1: Exactly the yagya ceremony must be done in proper measurement.
2: A yagya ceremóniát pontos mértékek szerint kell végezni.
1: And in the proper scale. East, west, north, south.
2: Megfelelő terjedelemben az égtájakat figyelembe véve.
1: And that fireplace for the Yagya is like the mouth of the god.
2: Yagya tűzhely az olyan mint Isten hegye.
1: And what the mantras is coming like from that supreme.
2: És a mantrák a legfelsőbbtől származnak.
1: And how you will think and you will offer your ceremonies there that will become fruitful for you, liberating you.
2: Ahogy gondolkozol, amit ott felajánlasz, az gyümölcsöző lesz számodra, felszabadít téged.
0: शास्त्रों में बताया गया है कि देवता जो हैं, वो मंत्रों के अधीन हैं. मंत्र जो हैं, वो साधकों और ब्राह्मणों के अधीन हैं. अगर मंत्र की शक्ति के माध्यम से आप यज्ञ पूजन करते हैं तो देवताओं को निश्चित रूप से इस पृथ्वी के ऊपर आना पड़ता है और देव आकर के आपकी जो भी कठिनाइयां हैं चाहे वो आध्यात्मिक हुई चाहे सांसारिक हुई इस जीवन की संपूर्ण कठिनाइयों को देवता दूर करते हैं ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है और शास्त्र और वेद पूर्ण रूप से सत्य है सनातन है और इस धर्म की मूल आधार स्तंभ जो माने गए हैं वो शास्त्र और वेद माने गए हैं तो उनकी सत्यता पे किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है.
1: द स्क्रिप्चर्स द वेदास उपनिषद एक्सेट्रा देयर मंत्रास which influences the devas.
2: Iratok, a védek, upanishadok, bantrái hatnak a devakra.
1: Invite them.
2: Behívja őket.
1: And these mantras, these ceremonies is perfection by those scholars, so-called the pandit.
2: Mantrák, ceremóniák olyan tudósok, akiket panditoknak hívunk, azoknak a munkái.
1: Through their perfection, the devas, through these mantras which will be chanted, devas have to come from the astral world or heaven or whatever you call, to that place where the yagya is.
2: Az ő tökéletes munkájuk által a déváknak el kell jönniük a mennyországból vagy az asztrális síkról arra a helyre, ahol a jagja van.
1: And through that chanting of that mantras and presence of the devas, definitely it will help you, it will remove your negative energy, remove your problems, and it is a way to liberation.
2: Mantrák zengetése és a dévák jelenléte által elmennek a negatív energiáid, és a felszabadulás felé haladsz.
1: So this is not only just what we call a mantra chanting, it is the science, it is sanatan.
2: Ez nem csak egy mantra zengetés, hanem tudomány, sanatan.
1: It is eternal.
2: Örök.
1: Unchangeable.
2: Megváltoztathatatlan.
1: It is the truth.
2: Az igazság.
1: Is that scriptures?
2: Ez van az irat.

0: that granthas.
1: Granthakban.
2: ये जब अनुष्ठान या पूजा या मंत्र जब ऐसे गुरुदेव के सानिध्य में अगर आप करते हैं और सामूहिक रूप से करते हैं तो इसका 100 गुना फल आपको प्राप्त होता है. आप अगर 1 आहुति प्रदान करते हैं तो 1,00,000 आहुतियों का आपको फल प्राप्त होता है. ऐसा शास्त्रों में बताया गया है कि गुरु जो होता है वो धर्म के मार्ग पे, भगवान के मार्ग पे आपको प्रशस्त करता है. तो ऐसे गुरुदेव की शरण में आप यहाँ पर आए हुए हैं तो आप इस लाभ को अपने जीवन में प्राप्त करें. ऐसा मेरा और गुरुदेव के चरणों में आप सबके लिए मेरी तरफ से वंदन है, प्रणाम है.
0: सो सच ए अपॉर्चुनिटी, सच ए ओकेशन, सच ए सिचुएशन that such environment creates where this puja takes place. But if there is the presence of the Sadguru Dev, then one mantra's benefit appears to the aspirant 100,000 times more, not only once or twice. The one mantra, one ahuti, one offering in this fire, in the presence of the Gurudev, because Gurudev becomes your witness. And one mantra's benefit turns to you 100,000 times.
1: Az már önmagában
0: it is your, it is said mantras, it is said rishis, that is a science.
1: Tehát a rishik, a szentek azt mondták, hogy önmagában nagy lehetőség ezt a mantrát, ceremóniát gyakorolni, de hogyha Sadguru Dev jelen van, akkor egy mantra egy ahotta kimondásának 100,000-szeres ereje van, mert Sadguru Dev tanulja a mantrádnak.
2: Egy mantra ke madhyam se main apni vaani ko viram dena chahunga.
0: With his one mantra chanting, he is going to finished his speech.
1: Egy mantra zengetésével fogja befejezni.

कृपा। ध्यान करने के योग्य गुरु जी की प्रतिमा है, गुरु जी की मूर्ति है, ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति। पूजा के योग्य सदा सर्वदा उनके चरण हैं, पूजा मूलम गुरु पदम। मंत्र के समान उनके द्वारा दिए जाने वाले जो वाक्य हैं, जो प्रवचन हैं, जो आप सबको प्राप्त हो रहे हैं, वो मंत्र के समान निश्चित रूप से आप बहुत ही भाग्यशाली हैं जो गुरुदेव की शरण में हैं। मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, और मोक्ष के समान, मतलब इस 84 लाख योनियों के जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने के समान, गुरु की जो कृपा है वो उस कृपा से ही व्यक्ति इस जीवन में मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। मैं अपनी वाणी को इन मंत्र के माध्यम से गुरु चरणों में अर्पित करना चाहूंगा। आप सब एक बार बोलिएगा, सदगुरु।

0: बोलो मंत्र, बस इतना ही स्तुति।
1: गुरु जी का आदेश हुआ है, एक स्तुति आपके समक्ष माता जी की है, देवी की स्तुति है, उसको बोलना चाहूंगा।
0: इट इज वन प्रेयर
2: इमा
0: एडोरेशन
2: वो दौलत
0: ग्लोरी
2: दिचोइतेस
0: टू डिवाइन मदर
2: दिश्तनियोन्यानक।
1: ललिता त्रिपुरा सुंदरी की ये स्तुति है। इस स्तुति के अंदर यह बताया गया है कि हे भगवान, मैं आपकी पूजा अर्चना मंत्र किसी प्रकार से भी नहीं जानता हूं, पर मैं अपना सिर आपके चरण में अर्पित करता हूं। मैं आपके चरणों में अपना संपूर्ण शरीर मन वचन कर्म से आपकी शरण में हूं, मेरी रक्षा कीजिए।

ओम श्री लखपुर जी महादेव की जय। देवादिदेव देवेश्वर महादेव की जय। श्रीदीप नारायण भगवान की जय। हिंदू धर्म सम्राट परमहंस स्वामी श्री माधवनपुर जी महाराज की जय। विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी श्री महेश्वरानंदपुर जी सद्गुरुदेव भगवान की जय। सदा शिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। हरि ओम एंड गुड इवनिंग डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हु आर वाचिंग द लाइव वेबकास्ट टुडे फ्रॉम द होली लैंड इंडिया राजस्थान जारन। एज विश्व गुरुजी हैज सम वर्क एंड ही इज इन अपस्टेयर्स सो आई स्टार्टेड टुडे। So let's take for example

आराध्य भगवान श्री दीप नारायण महाप्रभु जी की जय। देवाधिदेव श्री देवापुरीषा महादेव की जय। हिंदू धर्म सम्राट परमहंस स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। विश्व गुरु परमहंस स्वामी महेश्वरानंद।

जय देवाधिदेव श्री देवापुरी जी महादेवा की जय। आराध्य भगवान श्री दीप नारायण महाप्रभु जी की जय। हिंदू धर्म सम्राट श्री परमहंस श्री स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। विश्व गुरु परमहंस श्री स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेवा की जय। सबक मंडल की जय। Okay, one more. One.

हिंदू धर्म सम्राट परमहंस स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। विश्व गुरु परमहंस श्री स्वामी महेश्वर नंद जी गुरुदेव की जय।

ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वंद्वातीतं गगनसदृशं तस्मस्यादिलक्ष्यं एकं नित्यं विमलचलं सर्वद्धि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुतं नमाम्यं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्तिं पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। ॐ शान्तिः शान्तिः शांतिः। श्रीदीप नारायण भगवान की, देवादिदेव देवेश्वर महादेव की, सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की, सत्य सनातन।

0: जी आपके चरण कमल बलिहारी है। श्रीदीप नारायण भगवान की, सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। देवाधिदेव देवेश्वर महादेव की जय। अलकपुर जी महादेव की जय।
1: विश्वा गुरु परमांशी स्वामी महेश्वरानंद गुरुदेवा की जय।
0: Further about the prayers tomorrow.
1: A dál o modlitbě si budeme říkat
0: Om
1: zítra.
0: Shanti, Shanti, Shanti.

0: जय। श्री सिद्धेश्वर महादेव की जय। श्री शलपुर जी महाराज की जय। हिंदुधाम समरत सतगुरु स्वामी माधवरण जी भगवान की जय। विश्व गुरु महामंडलेश्वर स्वामी महेश्वरन जी योगी राज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। आज की आनंद की जय।
1: जय।
2: वेरी गुड, थैंक यू, हरिओम एवरीबॉडी।

0: ओम्बोले श्री दीप नारायण अग्वान की जय।
1: श्री दीप नारायण भगवान की जय। श्री श्री देवपुरी जी।

0: बोले श्री भगवान देव पुरुष महादेव की जय, श्रीमान गिला जी महाराज की जय। दीप नारायण भगवान की जय, अलख पुरुष भगवान की जय, धर्म सम्राट समोदवानंद जी भगवान की जय, विश्व गुरु महामंडलेश्वर स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेव की जय।
1: Bolje Sri Dipnaram Bhagavana ki jai.

0: बड़े श्री रीत नरम भगवान की छे श्री मंगिया जी महाराज की छे
1: ओम बोले श्री भगवान देव शमहा देवा की जय श्री दीप नारायण भगवान की जय गुरुदेव शरण तुम्हारे गुरुदेव

0: बड़े भगवान देव पुरुष महादेव की जय। श्री श्री दीप नारायण भगवान की जय। श्री अलकपुरी जी सीधा पिता परम पड़ा की जय।
1: श्री दीप नारायण भगवान की जय।

अम्बले श्रीदीपनारायण भगवान की जय, गुरुदेव की जय, श्री ब्रह्मानंद जी की जय।

0: श्रीदीप नारायण भगवान की जय, गुरुदेवा की जय, श्री ब्रह्मानंद जी की जय।
1: Gracias.

0: श्रीदीप नारायण भगवान की जय, गुरुदेवा की जय, सभी ऋषि मुनि महात्माओं की जय।
1: श्रीदेव पुरुष महादेव की जय, श्रीदीप नारायण महाप्रभु जी की जय, श्री सियाल पुरुष महादेव की जय, श्री स्वामी माधवानंद जी सतगुरुदेव की जय, श्री महामंडलेश्वर स्वामी लालानंद जी महाराज की जय, विश्व गुरु श्री परमहंस स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेव की जय।

की जय। श्री दीप नारायण महाप्रभु जी की जय। श्री स्वामी माधवानंद जी सत गुरु देवा की जय। महानंदलेश्वर स्वामी लालानंद जी महाराज की जय। श्री विश्व गुरु परमहंस स्वामी महेश्वर नंद जी गुरु देवा की जय।